0: 2 मिनट बाद की एंट्री होने वाली है यार, कहां है वो, जाकर ढूंढो।
1: ओह गॉड, मैं अभी आया।